क्लिंगित, साहित्य रोशन क्रास्तानी, लॉयड रेगो, संगीत विनिल वेगस, गैलेले जमनसाथ प्रज्योत डेसा, गीत उड़ी उड़ी।

लोकलिंगीत, साहित्य रोशन क्रास्तानी, लॉयड रेगो, संगीत विनिल वेगस, गैलेले जमनसाथ, प्रज्योत डीसा, गीत उड़ी उड़ी।